0: Des voyages, ses combats et des guerres aussi. Un compagnon à qui beaucoup de peuples ont rendu hommage. Des histoires chevaleresques, mythiques ou liées au quotidien nous amènent dans un pèlerinage proche et lointain à la fois.
1: तो घोड़ी पर चंड परा अर बाबूजी की जान के मायने पधारिया और डेम्बा जी को घोड़ो हडमचरंग को भी पर चंड परा और डेमो जी खींचम लड़ाई करवा गया। रामदेव जी को घोड़ो शेतलो सफेद भी के पर कर सवारी अर बाबूजी की जान के मायने पधारिया और जाइल के खींची को जल घोड़ो भी पर चढ़ परा और अन भारत के मायने खींची झगड़ो करवा गया। अब बाबूजी की कहानी।